दोस्तों, कई बार बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करते करते छोटी खुशियों को नज़रअंदाज हम कर देते हैं। सुबह की चाय, खिड़की से आती धूप, किसी अपने का सुप्रभात, बगीचे में खिला एक फूल, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, ये सब जिंदगी के छोटे छोटे उपहार हैं। खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी वजह जरूरत नहीं होती।

साथियों, आज का दिन शुरू करते हुए क्यों ना एक छोटा सा संकल्प लिया जाए। मैं आज किसी से कठोर शब्द नहीं बोलूंगा, जहां संभव होगा मदद करूंगा, अपने काम को पूरे मन से करूंगा और सबसे जरूरी, आज मैं खुद को दूसरों से नहीं कल के अपने आप से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, धीमी गति से चलना कोई समस्या नहीं, रुक जाना समस्या है। इसलिए चलते रहिए लगातार बिना रुके।

कभी कभी सुबह अपने घर की खिड़की खोलकर देखिएगा, ठंडी हवा चेहरे को छूती है, पत्तियां धीरे धीरे हिलती हैं, दूर कहीं कोई पक्षी आवाज देता है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमसे कह रही हो, कल जैसा भी था आज तुम्हारे पास एक नया दिन है। आज की सुबह को एक नई शुरुआत बनाइए, मन में ईश्वर का नाम लीजिए, आंखों में उम्मीद रखिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और दिल में विश्वास रखिए, क्योंकि जिस मन में उम्मीद जिंदा रहती है वहां रास्ते कभी खत्म नहीं होते।

0: प्रारम्भो विधीयते। सितंबर मासस्य पञ्चदश दिनांकं यावत् अस्य अभियानस्य माध्यमेन देशे सिंगल यूज प्लास्टिक इति वस्तुभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं जनजागरूकता प्रवर्धयिष्यते। उर्वरक विभागेन सर्वेभ्यः कार्यस्थलेभ्यः स्वच्छता नियम पालनाय च आह्वानं कृतम्। प्रशासनेन मणिपुरे जनगणना कार्यस्य स्थगनस्य निर्णयः कृतः। अयं निर्णयः तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन ह्यः नवदिल्ल्यां मणिपुरस्य वर्तमानस्थितेः मूल्यांकनाय आयोजितस्य उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतानन्तरं कृतः। तदनन्तरं मणिपुरस्य उच्चन्यायालयेन निर्देशः दत्तः यत् अग्रिमादेशपर्यन्तं मणिपुरे जनगणना कार्यं स्थगितमेव तिष्ठेत्। भारतेन आर्थिक जगति पुनः कीर्तिमानं रचितम्। अस्य वित्तवर्षस्य अप्रैल जून त्रैमास्यां देशस्य वास्तविक सकल गृहोत्पादः 17.8% अवर्धत। प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यद् वैश्विक समाह्वानानां सम्मुखीकरणं विधाय अपि भारतेन एषा महती उपलब्धिः समर्जिता। चतुर्थः भारत जर्मनी पर्यावरण मञ्चः अद्य नवदेहल्यां निर्वहिष्यते। अस्य मञ्चस्य मुख्यमुद्देश्यं पर्यावरण संकटस्य जलवायु परिवर्तनस्य च समाह्वानानां सम्मुखीकरणाय द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढं कर्तुमस्ति। केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादवः जर्मन मन्त्रिणा कार्स्टन श्नाइडर इत्यनेन सह अस्य सम्मेलनस्य सह अध्यक्षतां विधास्यति। फुटबॉल इत्येतस्यां क्रीडायां एषमः अंडर-20 एशिया कप इत्यस्यां चषक स्पर्धायां भारतेन ह्यः ताश्कन नगरे सीरिया देशं 1-0 इति अंकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: ആകാശവാണി മീഡിയം വേവിൽ തിരുവനന്തപുരം 1161 കിലോഹെർട്സ്, ആലപ്പുഴ 576 കിലോഹെർട്സ്, കവരത്തി 1152 കിലോഹെർട്സ്. ആലപ്പുഴ എഫ് എം 103.5, കായംകുളം എഫ് എം 100.1, പത്തനംതിട്ട എഫ് എം 101 മെഗാഹെർട്സ്.
2: കാർഷിക മേഖലാ വാർത്തകൾ.

0: സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞ് 59 മിനിറ്റും 50 സെക്കൻഡും. 8 മണിക്ക് സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹി റിലേ.
1: മേരി ബാങ്ക് ഹമേശാ മേരെ സാത്ത് ചൽത്തി ഹൈ. സുബഹ ഉഠതി ഹൂ തോ പൈസേ ജമാ കരാതി ഹൈ. കസ്റ്റമർ സാദാ ഹോ ജാതേ ഹൈ തോ പൂരാ ഗല്ലാ സംഭാൽ ലേതി ഹൈ. ആധി രാത് കോ ഭി ഉഠാ കേ ബതാതി ഹൈ കി മാഡം, ലക്ഷ്മി ഫൽ ഭണ്ഡാർ കാ പേമെന്റ് ആ ഗയാ ഹൈ. ജൻധൻ ബാങ്ക് ഖാതാ ക്യാ മിലാ? മുഝേ തോ ഉംഗലിയോ കേ ഛോർ പർ ബീമാ, പെൻഷൻ, ഡിബിടി സാരി ബാങ്കിംഗ് സുവിധായേ മിൽ ഗയി ഹൈ.
2: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं. पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കിർഗിസ്ഥാൻ കി രാജധാനി ബിഷ്കേക് മേ ആജ് ഷംഗായി സഹയോഗ് സംഗഠൻ ശിഖർ സമ്മേളൻ കോ സംബോധിത് കരേംഗെ. ചാലു വിത്ത വർഷ് കി പഹലി തിമാഹി മേ ദേശ് കി ജിഡിപി 7.8% ബഡി, റിസർവ് ബാങ്ക് കെ 7% കെ അനുമാൻ സെ അധിക. അമരീക്ക നെ ഭാരത് കോ ഗതിശീൽ, മജബൂത് ഓർ അനുകൂല അർത്ഥവ്യവസ്ഥ ബതായാ. ഭാരത് നെ സിന്ധു ജൽ സന്ധി പർ മധ്യസ്ഥതാ ന്യായാലയ കാ ഫൈസലാ ഠുകരായാ. नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया. और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया. 21 साल के शानदार करियर का अंत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे. भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है. भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है. हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए. भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है. भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है. विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की. श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा.
5: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा.
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है. उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा.
5: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है.
3: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही. ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी. इस बीच अमरीका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
6: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है, और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहां तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
3: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
7: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
7: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर

0: सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केउंझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री

0: मंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्व गुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंस मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एड्रेस SCO समिट इन किर्गिस्तान्स कैपिटल बिश्केक टुडे। कंट्रीज GDP ग्रोज 7.8% इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, बीटिंग RBI's प्रोजेक्शन ऑफ 7%। US describes India as dynamic, strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. Prime Minister Narendra Modi will address the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit has been held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. We have more from a correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi, in his address to the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit, will underline India's priorities in the areas of security, connectivity and opportunity. India has consistently opposed double standards in the fight against terrorism, separatism and extremism. India believes that greater connectivity among member countries is essential for peace and prosperity in the region. At the same time, connectivity projects must respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. India has also been emphasizing the need to create new opportunities for the youth of member countries and promote the startup ecosystem. India believes that the energy, innovation and entrepreneurship of young people can give a fresh impetus to regional development and cooperation. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
2: On the first day of his visit yesterday, PM Modi engaged in cultural events, paid tribute to Mahatma Gandhi, attended the opening ceremony of the 6th World Nomad Games alongside other world leaders. Mr. Modi held bilateral meeting with the Russian President Vladimir Putin yesterday. During his talk with Mr. Putin, Ms. PM Modi pushed for a diplomatic resolution to global conflicts, emphasizing the need to move from endless war to the end of war.
4: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज NCERT के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
3: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने। लिखा है,
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
3: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं,
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है, सादर धन्यवाद।
3: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
2: जी। श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकानाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
3: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
2: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकानाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी

0: क्रेता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
1: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए।
0: जी,
1: वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
0: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
1: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
0: जी,
1: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
0: जी,
1: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
0: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
1: ए लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
0: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
1: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
0: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
1: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
0: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए। लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली, उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
1: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
0: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
1: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओ, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम My Name।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।

0: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
2: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए

0: वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, वाह अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
3: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर

0: so good in mathematics and physics.
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
2: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
3: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
3: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: आकाशवाणी ഇപ്പോൾ ഗാനോപഹാരം. ഗാനോപഹാരത്തിൽ ഇന്നാദ്യം പോലീസ് എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ചിത്രയും ബാലും പാടിയ ഗാനം. ഗാനരചന ജോഫി തരവിൻ, സംഗീതം ഔസേപ്പച്ചൻ.

0: ഇന്നത്തെ മഴവില് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കൊപ്പം ഇതുവരെ സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ രഞ്ജിനി നായർ. ഏവർക്കും ഒരു ശുഭസായാഹ്നം ആശംസിക്കുന്നു.
1: ഭാരത് സ്കിൽ കണക്ട് പോർട്ടൽ വഴി നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിനുള്ള പഠന സാമഗ്രികൾ മലയാളം ഉൾപ്പെടെ 12 പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്. വിഷയം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനും പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ സാങ്കേതിക അറിവ് നേടൂ. ഒരു മികച്ച നാളേക്ക് തയ്യാറെടുക്കൂ.
0: സമയം 5 മണി.
2: ഏ ആകാശവാണി കാ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര ഹേ ആജ് കെ ഹിന്ദി പ്രസാരണ മേ ആയേ സുൻതേ ഹേ അനില എ എൽ കി വാർത്ത ആദിവാസി സംസ്കൃതി വൈശ്വീകരൺ കെ ദോർ മേ.
3: ആദിവാസി സമാജ് ഭാരതീയ ഉപമഹാദ്വീപ് കി ഉസ് മൂൾ ചേതന കാ പ്രതിനിധിത്വ കർത്ത ഹെ ജോ സദിയോ സെ പ്രകൃതി കെ സാത്ത് പൂർണ്ണ സാമഞ്ജസ്യ ബിട്ടാകർ ജീവൻ വിദത് കർ രഹി ഹെ. ആദിവാസി ശബ്ദ കാ അർത്ഥ ഹി ആദികാൽ സെ രഹനെ വാലെ നിവാസി ഹെ ജോ ഏഹ് സ്പഷ്ട കർത്ത ഹെ കി ഇൻകാ അസ്തിത്വ ഇസ് ഭൂമി പർ സബ്സെ പ്രാചീൻ ഹെ. ഏഹ് സമാജ് കേവൽ അപ്നി വിശിഷ്ട ജീവൻ ശൈലി കേ ലിയെ ഹി നഹി ജാനാ ജാത്ത ബൽക്കി അപ്നി സ്വായത്തത ഇമാൻഡാരി ഓർ സാമൂഹികത കെ ഉൻ മൂല്യോ കെ ലിയെ ഭി പഹചാന ജാത്ത ഹെ ജിനെ ആധുനിക് സഭ്യതാവും നെ വികാസ് കി ദൌഡ് മേ കഹി പീച്ചെ ചോർ ദിയ ഹെ. ജൽ ജംഗൽ ഓർ ജമീൻ യെ തീൻ തത്വ കേവൽ ഉൻകി ആജീവിക കെ സാധൻ നഹി ഹെ ബൽക്കി ഉൻകെ അസ്തിത്വ കി പഹചാൻ ഓർ ഉൻകെ ഈശ്വർ കാ സാക്ഷാത് രൂപ ഹെ ജിസ്കെ ജീവൻ കെ പ്രതി നജരിയ ഏസാ ഹെ. ബാമണോ മേ പൈദാ ഹോങ്കെ ലിഖ് ലിഖ് മരോഗെ മാർവാടി ഹോങ്കെ തോൽ തോൽ മരോഗെ ചമാർ ഹോങ്കെ ജൂതാ ഖിസ് ഖിസ് മരോഗെ പർ ഹോങ്കെ വാരലി തോ ജംഗൽ കെ രാജാ ബനോഗെ. ആദിവാസി സമാജ് കേവൽ ഏക സമുദായ നഹി ബൽക്കി മാനവത ഓർ പ്രകൃതി കെ ബീച്ച് കെ സന്തുലൻ കാ ജീവന്ത് ഉദാഹരൺ ഹെ. യദി ഹമേ ജൽവായു പരിവർത്തൻ ഓർ പര്യാവരൺ സംരക്ഷൺ കി വൈശ്വിക് ജംഗ് ജീതിനി ഹേ തോ ഹമേ ആദിവാസി കെ പാരമ്പരിക് ഗ്യാൻ ഓർ ഉൻകെ ജംഗലോ കെ പ്രതി പ്രേം സെ സീഖ്ന ഹോക. സമാജ് കി മുഖ്യധാര കാ ഏഹ് കർത്തവ്യ ഹേ കി വഹ് ഉൻകെ അധികാരോ കാ രക്ഷാ കരേ ഓർ ഉനെ വികാസ് കെ അവസർ പ്രദാൻ കരേ ബിനാ ഉൻകി മൗലിക് പെഹചാൻ കോ നുക്സാൻ പഹുഞ്ചായെ. ആദിവാസി സമാജ് കാ ജീവൻ ദർശൻ പൂരി തരഹ സെ ജൽ ജംഗൽ ഓർ ജമീൻ പർ ആധാരിത ഹെ. ശഹരി സഭ്യതാവും കെ വിപരീത് ആദിവാസി സമുദായവും നെ പ്രകൃതി കോ സംസാധൻ കെ ബജായ് ദേവത മാന ഹെ. ഉൻകി പരമ്പരാവും മേ പഹാഡോ നദിയോം ഓർ പേടോ കി പൂജ കി ജാതി ഹെ. ഏഹ് ഗഹരാ ജുഡാവ് ഹി ഹെ കി ആജ് ഭാരത് കെ സബ്സെ സമൃദ്ധ വൻ ക്ഷേത്ര ഉനി ഇലാക്കോ മേ ബച്ചേ ഹെ ജഹാ ആദിവാസി സമാജ് നിവാസ് കർത്ത ഹെ. വേ പ്രകൃതി സെ ഉത്തനാ ഹി ലേത്തെ ഹെ ജിത്തന ജീവിത് രഹനെ കേ ലിയെ ആവശ്യക് ഹെ ജോ ആജ് കെ സമയ മേ സതത് വികാസ് കാ സബ്സെ ബഡാ ഉദാഹരൺ ഹെ. ആദിവാസി സമാജ് കി ഏക് സബ്സെ ബഡി വിശേഷത ഉൻകി സാമൂഹിക് ജീവൻ ശൈലി ഹെ. എഹാം വ്യക്തി സെ ഊപ്പർ സമുദായ കോ രക്കാ ജാത്ത ഹെ. ഉൻകെ ഗാവോ മേ സാമാജിക് നിർണയ അക്സർ ആപസി സഹമതി ഓർ പഞ്ചായത്ത് കെ മാധ്യമ സെ ലിയ ജാത്ത ഹെ. ഏക് ഓർ മഹത്വപൂർണ പഹലു മഹിളാവോ കി സ്ഥിതി ഹെ. അധികാംശ ആദിവാസി സമുദായോ മേ മഹിളാവും കോ സാമാജിക് ഓർ ആർത്തിക് നിർണയോ മേ ബരാബരി കാ ഹക് പ്രാപ്ത ഹെ. ദഹേജ് പ്രദ ഓർ ലിംഗ് ഭേദ് ജേസി കുരുതിയ പാരമ്പരിക് ആദിവാസി സമാജ് മേ നാ കെ ബരാബർ രഹി ഹെ ജോ ഉനെ ആധുനിക് സമാജ് സെ ബി കഹി ആഗെ ഖടാ കർത്തി ഹെ. സാമാജിക് സംരചന കി ദൃഷ്ടി സെ ആദിവാസി സമുദായ അത്യന്ത ലോകതാന്ത്രിക് ഓർ സമതാവാദി ഹോത്ത ഹെ. എഹാം ഊഞ്ച് നീച്ച് യാ ജാതിഗത് ഭേദ്ഭാവ് കി വൈസി കഠോർ വ്യവസ്ഥ നഹി പായി ജാതി ജൈസി മുഖ്യധാര കെ ശഹരി സമാജോ മേം ദേക്കി ജാതി ഹെ. നിർണയ ലേനെ കി പ്രക്രിയ മേം അക്സർ സാമുദായിക് ഭാഗീദാരി ഹോത്തി ഹെ ഓർ പഞ്ചായത്ത് ജൈസി വ്യവസ്ഥാവും കെ മാധ്യമ സെ വിവാദോ കാ നിപട്ടാര ആപസി സഹമതി സെ കിയാ ജാത്ത ഹെ. മഹിളാവോ കി സ്ഥിതി ഭി ഇസ് സമാജ് മേം അപേക്ഷാകൃത അധിക് സ്വതന്ത്ര ഓർ സമ്മാൻ ജനക രഹി ഹെ. സമ്പത്തി കി അധികാർ ഹോയ ജീവൻ സാത്തി ചുന്നേ കി സ്വായത്തത ആദിവാസി സമാജ് നെ സദിയോ സെ പെഹലെ ഉൻ പ്രഗതിശീൽ മൂല്യോ കോ അപ്നാ ലിയാ ഥാ ജിനെ ആജ് കാ ആധുനിക് സമാജ് പാനേ കി കോശിഷ് കർ രഹ ഹെ. ഭാരത് കി സാംസ്കൃതിക് വിവിധത കി ജഡോ മേ ആദിവാസി സമാജ് ഏക് ഏസാ സ്തംഭ ഹെ ജിസ്നെ സദിയോ സെ അപ്നി വിശിഷ്ട പെഹചാൻ പരമ്പരാവും ഓർ പ്രാകൃതിക് ജീവൻ ശൈലി കോ സംജോകർ രഖ ഹെ. ഏഹ് സമാജ് കേവൽ ഏക് ജനസംഖ്യാ സമൂഹ നഹി ഹെ ബൽക്കി ഏഹ് ഉസ് പ്രാചീൻ സഭ്യത കാ ജീവിത പ്രമാൺ ഹെ ജോ പ്രകൃതി ഓർ മനുഷ്യ കെ ബീച്ച് അടൂട്ട് സഹ അസ്തിത്വ കോ ദർശാതി ഹെ. आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जो मुख्य रूप से उनकी मौखिक परंपराओं, लोकगीतों और लोक नृत्यों के माध्यम से जीवित है। उनकी कलात्मकता और उनके दैनिक जीवन की वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, दीवारों पर की गई चित्रकारी और हाथ से बुने गए वस्त्रों में साफ झलकती है। इनके गीत और नृत्य अक्सर प्रकृति के चक्रों जैसे ऋतु परिवर्तन, फसल की बुवाई और कटाई से जुड़े होते हैं। कर्मा, सरहुल और बिहू जैसे त्योहार न केवल खुशी मनाने के अवसर है, बल्कि यह समाज के भीतर एकता और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम भी है। आदिवासी कला, संगीत और नृत्य उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। चाहे वह झारखंड का सरहुल नृत्य हो, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग या फिर पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संगीत, हर रूप में मिट्टी की सुगंध रची बसी होती है। उनके वाद्य यंत्र बांस, लकड़ी और मिट्टी जैसे प्राकृतिक तत्वों से बने होते हैं। उनकी लोक कथाएं मौखिक परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, जिसमें वीरता, नैतिकता और पर्यावरण के प्रति प्रेम की कहानियां समाहित होती है। आदिवासी धर्म और आध्यात्मिकता पूरी तरह से प्रकृति की शक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। वे वृक्षों, पर्वतों, नदियों और पशुओं को अपना पूर्वज या रक्षक मानते हैं। वे किसी पत्थर की मूर्ति के बजाय सखुआ के पेड़ों या पवित्र गुंजों की पूजा करना अधिक सार्थक समझते हैं। उनकी यह मान्यता दर्शाती है कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। यह दर्शन आज के वैश्विक जलवायु संकट के समय में पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन सकता है, क्योंकि आदिवासी संस्कृति में दोहन नहीं बल्कि सह अस्तित्व का सिद्धांत प्रमुख है। इतनी समृद्ध विरासत के बावजूद आदिवासी समाज आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसमें वैश्वीकरण मुख्य समस्या है। 21वीं सदी के वैश्वीकरण ने इन समुदायों की भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ दिया है। आज आदिवासी शब्द केवल जंगलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा समाज का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने जड़ों को बचाते हुए आधुनिक दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाने का संघर्ष कर रहा है। आदिवासी समुदाय शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दुनिया में हो रहे नवीनतम विकासों से अनजान है। वे न केवल वैश्वीकरण की मूल्य प्रकृति और स्वरूप से अनजान है, बल्कि आज वे इसके प्रभाव के प्रत्यक्ष शिकार भी है। हालांकि वे वैश्वीकरण का वास्तविक स्वरूप नहीं देख सकते, लेकिन यह निश्चित रूप से इसे प्रभावित करता है। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण उनके निवास स्थानों पर लगातार दबाव बढ़ा है। विस्थापन की समस्या ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक जड़ों को भी कमजोर किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के साथ साथ अपनी जमीन के हक के लिए भी उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा है। हालांकि भारतीय संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन अधिकारों का पूर्ण क्रियान्वयन अभी भी एक लक्ष्य बना हुआ है। आज के वैश्विक परिदृश्य में आदिवासी समाज एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ उनकी सदियों पुरानी परंपराएं हैं और दूसरी तरफ आधुनिक की तीव्र लहर। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि विकास का अर्थ आदिवासी पहचान को मिटाना नहीं, बल्कि उसे सहेजना होना चाहिए। उनकी सामुदायिक भावना, जिसमें स्व से पहले सर्वस्व आता है, आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब हम आदिवासी संस्कृति को सम्मान देते हैं, तो हम केवल एक समुदाय को नहीं बचाते, बल्कि हम मानवता के उस आदिम और शुद्ध स्वरूप को बचाते हैं, जो प्रेम, समानता और पारिस्थितिक संतुलन पर आधारित है। विकास की परियोजनाओं के नाम पर उनका विस्थापन और उनकी भाषाओं का लुप्त होना एक गंभीर चिंता का विषय है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करें और उन्हें विकास की मुख्यधारा में इस तरह शामिल करें कि उनकी जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। आदिवासी संस्कृति का संरक्षण केवल एक समुदाय को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि उस मानवीय विरासत और प्राकृतिक ज्ञान को बचाने का प्रयास है, जो पृथ्वी के भविष्य के लिए अपरिहार्य है। वर्तमान समय में वैश्वीकरण और शहरीकरण के बढ़ते दबाव के कारण आदिवासी समाज और उनकी अनूठी संस्कृति के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई है। आदिवासी समाज ऐतिहासिक रूप से उन क्षेत्रों में बसा है जो प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, जल और वनों से समृद्ध है। वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहुंच इन दुर्गम क्षेत्रों तक आसान हो गई है। खनन परियोजनाओं और बड़े बांधों की निर्माण ने आर्थिक विकास को तो गति दी है, लेकिन इसके बदले आदिवासियों को अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित होना पड़ा है। यह एक बड़ी विडंबना है कि जिस जमीन पर आदिवासी सदियों से रहे, वैश्विक अर्थव्यवस्था की दौड़ में उन्हें उसी जमीन से बेदखल होना पड़ रहा है। वैश्वीकरण केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह विचारों और संस्कृतियों का भी प्रवाह है। पश्चिमी और शहरी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण आदिवासी युवाओं में अपनी पारंपरिक भाषा, पहनावे और रीति रिवाजों के प्रति रुचि कम हो रही है। उनकी समृद्ध मौखिक परंपराएं और लोकगीत अब लुप्त होने की सीमा पर है। सांस्कृतिक समरूपीकरण के इस दौर में आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट पहचान को बचाने के लिए बड़ा संघर्ष कर रहा है। आदिवासी समाज के पास जड़ी बूटियां और प्राकृतिक उपचारों का अगाध ज्ञान है। वैश्वीकरण के दौर में बड़ी दवा कंपनियां इस ज्ञान का उपयोग कर रही है। अहम चुनौती बायोपायरेसी की है, जहां उनके पारंपरिक ज्ञान का पेटेंट कोई और करा लेता है और उसका लाभ उन समुदायों तक नहीं पहुंचता जिन्होंने इस सदियों से सहेजा है। वैश्विक स्तर पर ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो आदिवासियों के इस बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा कर सके। विकास की मुख्यधारा से जुड़ने की चाहत और गांवों में संसाधनों की कमी के कारण आदिवासियों का शहर की ओर पलायन बढ़ा है। शहरीकरण ने उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं तो प्रदान दी है, लेकिन शहरों की कॉन्क्रीट के जंगलों में वे अक्सर अपनी पहचान खो देते हैं। शहरों में रहने वाले आदिवासी युवा अपने मातृभाषा और पारंपरिक कलाओं से दूर होते जा रहे हैं। वे एक ऐसे हाइब्रिड समाज का हिस्सा बन रहे हैं जहां वे ना तो पूरी तरह शहरी बन पा रहे हैं और ना ही पूरी तरह अपने परंपराओं से जुड़े रह पा रहे हैं। आदिवासी वैश्वीकरण का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम विकास और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। विकास की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें आदिवासी समाज केवल दर्शक ना रहे बल्कि भागीदार बने। उन्हें उनकी जड़ों से काटे बिना आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। वैश्विक समाज को यह समझना होगा कि आदिवासी जीवन शैली में छिपे पर्यावरण संरक्षण के सूत्र ही हमें जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकटों से बचा सकते हैं। आज के दौर में आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का अर्थ उनकी पहचान को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति को बचाते रखते हुए आधुनिक अवसर प्रदान करना होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूलों जैसी पहल और उनके उत्पादों का उचित बाजार दिलाना एक सकारात्मक कदम है। आदिवासी समाज से हम यह सीख सकते हैं कि कैसे आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी जीवन शैली यह सिखाती है कि यदि प्रकृति सुरक्षित है तभी मानव जाति का भविष्य भी सुरक्षित है। आदिवासी समाज और उनकी संस्कृति को केवल एक अतीत की विरासत के रूप में देखना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। वास्तव में यह जीवन जीने का वह शाश्वत मार्ग है जिसे आधुनिक दुनिया आज धीरे धीरे भूलती जा रही है। आदिवासी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सरलता और कृतज्ञता में है। जहां आधुनिक समाज प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश में लगा है, वहीं आदिवासी समाज प्रकृति के साथ सुर में सुर मिलाकर जीने की कला सिखाता है। उनकी संस्कृति का हर नृत्य, हर गीत और हर अनुष्ठान मिट्टी की गंध और पेड़ों की सरसराहट से जुड़ा है, जो हमें याद दिलाता है कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। आदिवासी समाज और संस्कृति का भविष्य हमारे सामूहिक प्रयासों पर निर्भर है। उनकी कला, भाषा और ज्ञान को केवल संग्रहालयों तक सीमित न रखकर उन्हें आधुनिक नीतियों का हिस्सा बनाना अनिवार्य है। अंततः आदिवासी समाज का अस्तित्व ही इस प्रति के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। यदि हम उनके जंगलों, उनकी नदियों और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर पाते हैं तो ही हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और समृद्ध धरती सौंप पाएगा।
2: अभिया अनिला एल की वार्ता सुन रहे थे, आदिवासी संस्कृति वैश्वीकरण के दौर में। इसी के साथ आज

0: ചലച്ചിത്രഗാനം സമാപിച്ചു. ഇനി 8:45 സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: നമസ്കാർ, ആകാശവാണി സേ സമാചാർ സന്ധ്യ കെ സാത്ത് മേ പ്രിയങ്ക അരോഡ. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया. सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न. प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया. कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया. मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की. और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है. किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है. श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की. प्रधानमंत्री ने कहा

0: कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
3: सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
5: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2,250 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2,873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
6: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
7: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
8: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
7: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रुपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित

0: दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on SCO member countries to unite against entire terror ecosystem. SCO summit culminates with 13 outcome agreements spanning counter-terrorism, climate action and digital cooperation. Prime Minister concludes his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan reviews progress of PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, stresses on outcome-based monitoring and timely delivery of benefits to farmers. Supreme Court orders closure of FIRs across the country over student protests. CJP withdraws proposed September 5 march following assurances from centre. Heavy to very heavy rainfall likely at isolated places in Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand tomorrow. And in men's cricket, 15-member Indian squad announced for 3-match T20 international series against Afghanistan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Simi George, in a media briefing said, the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
2: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
1: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Our correspondent reports, India's priorities have found prominent place in the SQ Bishkek Declaration.
3: The declaration reaffirmed the idea of one earth, one family, one future for developing dialogue. SCO member states strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations and said that double standards in combating terrorism are unacceptable. They also called for concerted efforts against terrorism, including the cross-border movement of terrorists. The declaration also stressed greater scientific, technical, and innovative cooperation through active participation of young people, including the SCO Young Scientist Forum, an Indian initiative. Leaders welcomed the SCO Civilization Dialogue Forum to be held in India this year and noted India's initiative of the SCO Young Authors Conclave. The declaration also provides for including English as an official and working language of the SCO. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
1: The 26th Shanghai Cooperation Organization Summit concluded with 13 key outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management, and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions.
2: Besides the Bishkek declaration, 4 MOUs and over 20 decisions and statements were adopted at the summit in the fields ranging from climate, nuclear safety, energy conservation, and combating drug addiction. India led and supported several initiatives in the Bishkek declaration, such as English in SCO Charter as the official language, Civilization Dialogue Forum, Young Scientists Forum, and Young Authors Conclave.
1: The MEA said, addressing the summit, Prime Minister Narendra Modi called for a roadmap for the next 25 years. He stressed on the need for concrete outcomes in areas of security, connectivity, and opportunity. The two-day SCO summit was held at Bishkek in Kyrgyzstan from 31st August to 1st September. Prime Minister Modi has now left for New Delhi after concluding his successful visit to the two countries. This is Akashvani giving you the news.
4: For news on the go, follow us on X at AIR News Alerts and listen to AIR News on PB Shabd.
1: Welcome back. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today reviewed two schemes, Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, PMDDKY, and the Progress of Watershed Development Component, WDC-PMKSY, of Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana in New Delhi. The meeting focused on accelerating implementation of the PMDDKY scheme in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes, and improving district-level performance for farmers. The scheme focuses on 6 key objectives of increasing agricultural productivity, promoting crop diversification, and sustainable agricultural practices, among others. More from our correspondent.
5: The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that the average score of the 100 districts across the 6 objectives of the scheme increased from 22.54 in April 2026 to 38.85 in July 2026, an improvement of 16.31 points. The ministry said that the scheme is being implemented through the convergence of 36 central schemes of 11 ministries and departments along with the state schemes and private sector participation. Dhan Dhanya Krishi Yojana was approved by the Union Cabinet last year and was launched on 11th October 2025. Shiva Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: During the review of WTC PMKS

0: रोटेशन है ये ऐसा, या कोई फ्यूचर में कुछ ऐसा?
1: कोई ऐसा नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन यूएस में आगे फेडरेट कैसे मूव करता है, वो स्टेबल पॉलिसी स्टांस रखता है या फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, वो डिपेंड करेगा. दैट विल बी सम क्रूशल फॉर दी ग्रोथ ऑफ अवर मूवमेंट इन दी बैंकिंग सेक्टर और दी फाइनेंशियल सेक्टर. बिकॉज व्हेन दे इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट देन देयर आर एक्सपेक्टेशन दैट इफ इन्फ्लेशन गोज अप देन दैट हैपेंस इन अदर कंट्रीज आल्सो.
0: तो आपके लिहाज से अभी अगर हम एक आम निवेशक की तरफ से अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कौन से ऐसे प्रमुख आपकी नजर में जो हों, जो सेक्टर्स हों, जो क्षेत्र हों जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्वेस्ट करना जहां पर समझदारी मानी जाएगी आज की तारीख में, जबकि हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली चीजें जो हैं काफी अस्थिर हैं, तो ऐसे में आप कौन से सेक्टर्स जो हैं वो बताना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: देखिए वैसे तो प्राची जैसे मैं बताता हूं, इंडिया इज अ प्रॉमिसिंग स्टोरी. इंडिया में ही इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी चीज है. और उसमें भी पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो जो मेन ग्रोथ सेंट्रिक सेक्टर्स हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर एक भारत की जो विकसित भारत की जो बुनियाद है, विकसित भारत को आगे प्रमोट कर रहे हैं. सो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है. इसके अलावा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, सरकार ने कितनी मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स की हैं, पीएलआई स्कीम दी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर रिफॉर्म्स हो रही हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हमारा डबल डिजिट में ग्रो भी कर रहा है अभी, और एक्सपोर्ट्स बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर ऑल्सो वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. देन द बैंकिंग, देन एनर्जी सेक्टर, ऑल दी सेक्टर्स आर आई बिलीव वेरी स्ट्रांग part of our growth trajectory.
2: So if we were to look at the geopolitical scenario, if Iranian barrels are further squeezed out of the market, how large an incremental supply shock are we talking about, and who are the marginal buyers and sellers who would be adjusting?
1: I think jo the major markets, the major emerging economies are in the major limelight. Actually they are the stakeholders in the buying and selling segment, but the monopolistic powers sometimes used and are in their vested interests that is impacting the whole trajectory of the world natural resources. But I would say there must be a great balance between the such things. Yeah.
0: पिछले महीने वस्तु और सेवा कर के संग्रह में वृद्धि हुई और ये 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले सालाना आधार पर 14.8% की बढ़ोतरी है. वित्त मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कुल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,37,249 करोड़ रुपए रहा, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 9.3% अधिक है. आयात से होने वाला जीएसटी संग्रह 29% बढ़कर 62,604 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे कुल मासिक संग्रह को बढ़ावा मिला. डॉक्टर शर्मा, आंकड़े तो काफी लुभावने हैं, अच्छे आए हैं. क्या ये इंगित करते हैं कि आने वाला जो तिमाही का जो परिणाम जो हो सकता है वो शायद बेहतरी की तरफ ही हो?
1: जी बिल्कुल प्राची. देखो जीएसटी एक सप्लाई साइड इंडिकेटर है जो बताता है कि जो हमारी सप्लाईज हैं वो इंटैक्ट है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एक्सपेंड हो रही हैं, अवर प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंग. और दूसरा डिमांड साइड फंडामेंटल्स, जैसे हमारा ऑटो सेल्स हो गया या फिर हमारी एफएमसीजी की ग्रोथ होगी, उससे पता चलता है कि हमारी डिमांड स्ट्रांग है. तो ये इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि ये जो महीने हैं जुलाई अगस्त सितंबर, दीज आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग. हमें अगस्त तक का तो पता चल ही रहा है कि जीएसटी नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग. अभी एक्सपोर्ट का डेटा आएगा, उसमें भी हम पॉजिटिव हैं कि बहुत अच्छा एक्सपोर्ट नंबर भी आएगा हमारा, जैसे पहले 13% का भी हो चुका है. और इसके अलावा जो आईआईपी नंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि 6.7% पे आईआईपी जुलाई में ग्रो किया है
0: जी,
1: और अगस्त में भी बेहतर रहने की उम्मीद है. तो ये जो जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है, इसके इंडिकेटर भी जो काफी स्ट्रांग है, तो ये इनसे जो हमारा

0: 2 के नंबर्स आएंगे जीडीपी के, वो भी काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। यहां से ये हम एक इंडिकेशन है कि वी आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली,
1: पॉजिटिव इंडिकेशन हमें मिल रहा है।
0: हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ बनेगा इस वर्ष के लिए 26-27 के लिए, वो 7% से ऊपर ही रहना चाहिए।
1: जी। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अगस्त में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं विकास की गति 5 साल के निचले स्तर पर आ गई। आज जारी की गई HSBC इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने जुलाई में ये सूचकांक 53.5 से गिरकर 52.8 हो गया। मंदी के बावजूद सूचकांक विस्तार और संकुचन यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलग करने वाले महत्वपूर्ण 50 अंकों के स्तर से ऊपर बना रहा। उत्पादन और नए ऑर्डर में वृद्धि 5 साल के निचले स्तर पर आने के कारण विनिर्माण PMI अपने दीर्घकालिक औसत 54.2 से नीचे आ गया। कंपनियों ने पिछले महीने मांग में नरमी की सूचना दी, जिसके परिणाम स्वरूप खरीद स्तर और स्टॉक में भी कम वृद्धि हुई। डॉक्टर शर्मा, जब विस्तार से अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं, तो ये समझ पाते हैं कि इसी रिपोर्ट में एक ये भी कारण दिया गया है कि बिक्री में नरम माहौल के कारण अगस्त में रोजगार में मामूली गिरावट देखी गई, जो 2.5 साल में पहली बार हुआ है। तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट करती है इसको?
0: देखिए, इसमें प्राची ऐसा है कि जो ग्लोबल लेवल पे हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन आना स्वाभाविक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म वी आर वेरी स्ट्रांग, जो शॉर्टर टर्म ऐसी फ्लक्चुएशन होती है वो सेंटिमेंटल होती है। तो उसी की वजह से फंडामेंटल्स में भी मामूली तौर पे कई बार शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन जैसे आपने बताया, हमारा जो PMI इंडेक्स है अभी भी जो एक बेंचमार्क है, जो 50 अंक का, उसे कहीं ज्यादा
1: ऊपर है जी।
0: और मैन्युफैक्चरिंग में ही जैसे आपने बताया कि अभी भी काफी ऊपर है, अगर चाइना तो 50 से नीचे फिसल चुका है। इसी सब मंदी के दौर को देखते हुए जो चाइना का PMI फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वो 50 से नीचे है, लेकिन हम काफी ज्यादा ऊपर है 50 से। तो एक ऐसी स्थिति में वी आर डूइंग वेरी गुड कंपैरेटिवली ग्लोबल लेवल पे भी, ये ग्लोबल इंडेक्स है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दो महीने की या कुछ ही देर की बात है, जब तक ये कुछ सेटलमेंट होगा, जब वेस्ट एशिया क्राइसिस सेटल होगा, दिस विल अगेन बिकम वेरी रोबस्ट इन द कमिंग मंथ्स।
2: Moving on, India is preparing further customs and banking reforms, including risk-based import screening and a high-level review of the banking sector's role towards building a developed India. In an interview to a news agency on the sidelines of the G20 Finance Ministers' meeting in Nashville, Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman said the next phase would build on changes already made in direct and indirect taxation. Sitharaman also stated that the government is working to make the movement of imported goods through Indian ports more seamless. In this regard, a key proposal involves deploying scanners and concentrating checks on high-risk importers. The approach would allow customs authorities to focus their scrutiny on higher-risk imports while facilitating faster clearance in other cases. Sitharaman said confidence in the Indian banking system was reflected in foreign deposits and investments made by Indians living overseas. The indicators showed a positive story about trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. Now, that last line is extremely important, Dr. Sharma, that the story is very positive because it talks about the trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. And on top of that, the reforms that the minister is talking about will certainly boost the banking sector.
0: Yes, because reforms are very, very crucial for the growth of the economy, and government has undertaken many reforms, plethora of reforms during the last many years, particularly during the COVID and in the post-COVID years. That's why we are becoming more and more resilient. And our numbers, like the GDP numbers of first quarter at 7.8%, are now indicating that reforms are becoming visible, and this is the

0: प्रयास काफी बढ़ गए हैं। और अब जान लेते हैं एशियाई बाजारों के हाल। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आज 0.2% से अधिक बढ़ा और जापान के निकेई सूचकांक में 0.1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
1: Global crude oil prices rose today as the resumption of fighting between the US and Iran in West Asia renewed fears of supply disruptions. Brent crude was trading 1.5% up at $91.88 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.1% higher at $87.54 per barrel when reports last came in. Dr. Sharma, with Brent, with these figures that I just read out, what is your base case oil price range for Q4 2026 if U.S. pressure on Iran intensifies?
2: Mr. Lake, I think nobody can predict the prices for in such a scenario. But if the escalation comes next time, then I would say prices can go past 100 per barrel in the international market.
1: Okay.
2: Yep.
0: आगे बढ़ते हैं। सराफा बाजार में सोना 1.7% की गिरावट के साथ 153,183 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 2.8% लुढ़ककर 2,30,419 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। डॉक्टर शर्मा, सोने और चांदी को लेकर के खासी दिलचस्पी होती है भारतीय लोगों की, हम लोगों की, तो इसके जो दाम है उस पर मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगी।
2: देखिए प्राची, जो सोने के दाम है और या चांदी के दाम है, उन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई है इस साल में। अभी हाई किया $5,500 पर ट्रायंस इन इंटरनेशनल मार्केट इन जनवरी फरवरी, और फिर वो 4,000 को भी टच किए। आप देखिए कि कितना बड़ा मूवमेंट $1,500 का एक ऑन्स के मुकाबले में रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनका जो इंटरनेशनल मार्केट में एवरेज है फॉर द करंट ईयर, that will be at around somewhere between 4500 to 4700.
0: Current factors ऐसे क्या मतलब रहे होंगे जिस वजह से, अगर मैं आपसे चाहूँ कि आप इस पर भी प्रकाश डालें।
2: देखिए जो factors हैं वो एक तो buying है, strong buying by the central banks, and second जो global uncertainties हैं, and that create interest for the safe haven. लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन आती है जब डॉलर मजबूत या कमजोर होता है, क्योंकि डॉलर भी बहुत तेज गति से फ्लक्चुएशन लेता है बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस। तो गोल्ड के प्राइसेस भी उसी तरीके से मूव करते हैं, लेकिन इसका एवरेज जो रहेगा, मैं ये समझता हूँ कि $4,500-4,600 पर ट्रायंस इस साल में।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी कार्यक्रम में आने के लिए। और
1: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स फ्लैट, निफ्टी फॉल्स बाय 25 पॉइंट्स, ग्रोस जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज नियरली 15% टू ऑलमोस्ट 2 lakh crore रुपीस इन अगस्त दिस ईयर, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंथ्रा। टिल टुमारो, गुड बाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए

दोस्तों, कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों के कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा किसानों को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कार्स्टन श्नाइडर से मुलाकात की। बैठक में चक्रीय अर्थव्यवस्था, कचरा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और टिकाऊ समाधान पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि भारत और जर्मनी जलवायु संरक्षण और नए प्रयोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को

ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हां, रात के इस शांत सफर में हम और आप एक साथ हैं और लेकर हाजिर हूं मैं निशिगंधा, जहां हम करते हैं कुछ बातें दिल की, जो बातें कहने की नहीं बल्कि महसूस करने की होती हैं। और जब किसी की एक मुस्कान याद आ जाती है या फिर किसी की खामोशी जब हमारे दिल को सुकून दे जाती है, तब हमें नगमों की, गीतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील होती है। तो चलिए इस खूबसूरत एहसास के बीच हम और आप सुनते हैं कुछ ऐसे ही गीत नगमे जिसमें दिल की कोई अनकही बात शामिल है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि काम अब कोई ना आएगा बस एक दिल के सिवा, काम अब कोई ना आएगा बस एक दिल के सिवा, हम सफर कोई नहीं दूर ये मंजिल के सिवा। हमने दुनिया की हर एक शय से उठाया दिल को, हमने दुनिया की हर एक शय से उठाया दिल को, लेकिन एक शोक के हंगामाए महफिल के सिवा, काम अब कोई ना आएगा बस इस दिल के सिवा, हम सफर कोई नहीं दूरिये मंजिल के सिवा।

दर्द बढ़कर दवा ना हो जाए, दर्द बढ़कर दवा ना हो जाए, जिंदगी बेमजा ना हो जाए, लज्जत इंतजार ही न रहे, कहीं वादा वफा ना हो जाए, कामयाबी ही कामयाबी हो तो ये बंदा खुदा ना हो जाए, दर्द बढ़कर दवा ना हो जाए, जिंदगी बेमजा ना हो जाए।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, और मैं हूं आपके साथ सुरभि। मोहब्बत क्या, मोहब्बत का सिला क्या, मोहब्बत क्या, मोहब्बत का सिला क्या, हमारा हाल हमसे पूछना क्या, हमें दुनिया में अपने गम से मतलब, हमें दुनिया में अपने गम से मतलब, जमाने की खुशी से वास्ता क्या, मोहब्बत क्या, मोहब्बत का सिला क्या, हमारा हाल हमसे पूछना क्या। और चलिए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं धूल का फूल फिल्म का ये गीत, महेंद्र कपूर साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं निशिगंधा सुरभि के साथ। रात के इस बेहद खूबसूरत पहर में, जी हाँ, हम आपके साथ हैं। और ऐसे ही जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ख्याल आता

देखते ही ये दिल अपने आप मुस्कुराने लगता है। अब चाहे उनसे रोज बात हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभी उनकी मौजूदगी का एहसास ही काफी होता है। शायद यही तो खूबसूरती है उस चाहत की, जिसमें कोई शिकायत नहीं होती बल्कि एक प्यार भरी उम्मीद होती है कि सामने वाला जैसे ही उसे याद करता है उसके चेहरे पर एक खुशी और मुस्कुराहट छा जाती है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि तू अगर दिल नवाज हो जाए, तू अगर दिल नवाज हो जाए, सोज हम रंग साज हो जाए, दिल जो आगाह राज हो जाए, हर हकीकत मजाज हो जाए।

सिर्फ लहरा के रह गया आंचल, रंग बनकर बिखर गया कोई, फूल से खिल गए तसव्वुर में, दिल को छूकर गुजर गया कोई।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने कार्यक्रम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों से सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वो मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। 1995 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर को मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। श्री ठाकुर कार्मिक मंत्रिमंडल और योजना विभाग के मुख्य सचिव के साथ साथ मुख्य सतर्कता आयुक्त और नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन के प्रधान आवासीय आयुक्त का कार्यभार भी संभालेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादातर

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। रात की इस खामोश और खूबसूरत फिजा में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं सुरभि आपके साथ और आज हम एक बार फिर उन तमाम खूबसूरत एहसास की बात करेंगे जिन्हें अक्सर हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते, लेकिन ये दिल चुपचाप उन्हें महसूस करता है। कभी किसी की मुस्कुराहट हमारा पूरा दिन बदल देती है तो कभी किसी की आवाज़ सुनकर मन को सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना काफ़ी देर के बाद मिल गया हो। बात करेंगे दिल की मोहब्बत की और दिल मोहब्बत की इस हेरा फेरी की भी, जहाँ पर कोई पास नहीं होता है लेकिन फिर भी दिल हमारा उसी के पास होता है। तो चलिए सबसे पहले हम और आप सुनते हैं हेरा फेरी फिल्म से किशोर कुमार और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में इस गीत को।

ये वक्त की हेरा फेरी है, और यकीनन वक्त जब पलटता है तो बहुत तरीके से पलट जाता है। जीवन में जब वक्त पलटता है तो कई वादे वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, और वहीं कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये दिल उम्र भर याद रखता है, रखना चाहता है। कभी किसी ने कहा था कि हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन फिर वक्त ने एक ऐसी करवट बदल ली कि वही आवाज़ सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। इन्हीं अधूरे वादों और पुरानी यादों को जब बैठकर महसूस करते हैं तब दिल दिमाग में एक बड़ा ही खूबसूरत गाना बजने लगता है।

उन क्या है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। अगला गीत लेकर आए हैं आपके लिए, फिल्म है पत्थर के सनम, मुकेश साहब की आवाज। बहुत खूबसूरत कहा किसी ने कि वो क्या गए पयामे सफर दे गए मुझे, वो क्या गए पयामे सफर दे गए मुझे, एक जज्बा ए जुनू ए असर दे गए मुझे। हर सिमत देखती हैं जो उनके जमाल को, लुत्फ़े हयात इश्क मगर दे गए मुझे, वो क्या गए पयामे सफर दे गए मुझे।

0: दरवाजे से अब चांद को रुखसत कर दो, मेरे दरवाजे से अब चांद को रुखसत कर दो, साथ आया है तुम्हारे जो तुम्हारे घर से, अपने माथे से हटा दो ये चमकता हुआ ताज, फेंक दो जिस्म से किरणों का सुनहरी जेवर, तुम तन्हा मेरे गमखाने में आ सकती हो, एक मुद्दत से तुम्हारे लिए ही रखा है मेरे जलते हुए सीने का दहकता हुआ चांद, मेरे दरवाजे से अब चांद को रुखसत कर दो, जो साथ आया है तुम्हारे तुम्हारे घर से।
1: तू तुम्हें
2: हाँ
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है
1: कह

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर. और चलिए अब आपको सुनवाते हैं अनामिका फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में.

कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात जबानी कह देंगे, इस दिल में जरा तुम बैठो तो कुछ हाल हमारा पूछो तो, हम सादा दिल हैं अश्क मगर हर बात पुरानी कह देंगे। और इसी के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक, हमारी आपकी मुलाकात होगी रात सुरमई में 2:10 पर। और इसी के साथ दोस्तों आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती,

0: कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापारों को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वे मुंबई भी जाएंगे जहां वे हीरा बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। एयर मार्शल विवेक हांडे ने कल भारतीय वायुसेना में महानिदेशक चिकित्सा सेवाओं का पदभार संभाल लिया है। उन्हें स्थायी रूप से भारतीय वायुसेना में तैनात किया गया है। एयर मार्शल हांडे दिसंबर 1988 में सेना चिकित्सा कोर में शामिल हुए थे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। रात के 2:11 और 22 सेकेंड। चलिए आगाज करते हैं रात सुरमई प्रोग्राम का और आपको सुनवाते हैं आवारगी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज साहब ने।

सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दुनिया में यू भी हमने गुजारी है जिंदगी, दुनिया में यू भी हमने गुजारी है जिंदगी, अपनी कहाँ है जैसे उधारी है जिंदगी। आवाज मुझको ना दे गुजरे वक्त सुन, मुश्किल से हमने अपनी सवारी है जिंदगी। कोई खुशी भी पहलू में आई कभी नहीं, मेरी नजर में अब भी कंवारी है जिंदगी। हर एक तन्हा छोड़ के कहता है अलविदा, हर एक तन्हा छोड़ के कहता है अलविदा, कितनी ये बदनसीब बेचारी है जिंदगी। दुनिया में हमने यूं भी गुजारी है जिंदगी, अपनी कहाँ है जैसे उधारी है जिंदगी।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत खूब कहा है किसी ने कि हर एक दर्द को हरफे गजल बना दूंगा, हर एक दर्द को हरफे गजल बना दूंगा, चला तो हूं कि तेरी राह गुजर दिखा दूंगा। गमे हयात में भी मेरे साथ साथ ही रहना, पयंबरी से तेरा सिलसिला मिला दूंगा, चला तो हूं कि तेरी राह गुजर दिखा दूंगा। न इंतजार न आहें न भीगती रातें, खबर न थी कि तुझे इस तरह भुला दूंगा। हर एक दर्द को हरफे गजल बना दूंगा, अगर वहां भी तेरी आहटे न सुन पाऊं, अगर वहां भी तेरी आहटे न सुन पाऊं, तो आरजू की बस्तियां जला दूंगा। न इंतजार न आहें न भीगती रातें, खबर न थी कि तुझे इस तरह भुला दूंगा।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं, चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं, तुम्हारे शहर में कितने हंसी आजार मिलते हैं। चले आते हैं चुपके से ख्यालों के महो अंजुम, मेरी तारीख रातों को बहुत गमखार मिलते हैं। तुम्हारे शहर में कितने हंसी आजार मिलते हैं, चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं।

और चलिए रात सुरमई प्रोग्राम में चलते चलते अब आपको छोड़े जा रहे हैं अंदाज अपना अपना फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफ़र यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाज़त, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केन्द्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्ययोजना विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में भारत में डाटा सेंटर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुगमता पर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डाटा सेंटर, क्लाउड सेवा प्रदाताओं, बिजली उत्पादकों और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमों को सरल बनाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादातर भागों में भी ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और 17 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

पहली मुलाकात से सजा ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वरों से सजा। ओपी नैयर का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। 1967 में साथियों ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था दो दिलों की दास्तान। साथियों युगल गीतों को सुनने का अपना एक अलग ही आनंद होता है, अलग ही बातें होती हैं, अलग ही गुफ्तगू अंदाज होता है इन गीतों में। मित्रों हमारे जीवन में साथ का बहुत बहुत महत्व होता है। यही साथ जब गीतों के रूप में ढलता है, सजता है, तो उस गीत की खूबसूरती को भी बढ़ा देता है।

मन्ना डे और वाणी जयराम की आवाज उसी सजा ये गीत अभी आपने सुना साथियों, परिणय फिल्म से ये गीत था। 1974 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी साथियों। जयदेव का संगीत था, नक्श लायलपुरी की लिखी रचना थी। साथियों साथ हो तो रूठना मनाना भी रिश्तों का एक अहम अंग बन जाता है। इसी खूबसूरत बानगी से सजा ये गीत आपको सुनवाते हैं।

जी हाँ, शिकवे शिकायतें हों, जीने का मजा और भी आता है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम रूठने की कोशिश खुद ब खुद करते रहें और कोई हमें मनाने ही ना आए। जी हाँ, बात दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर ही होनी चाहिए। अव्वल तो ये रूठने मनाने का सिलसिला हमें तो लगता है होना ही नहीं चाहिए, और हो तो भाई जल्द से जल्द मान भी जाएं और रूठे ना, ये ज़रूर कोशिश करें। फिलहाल ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों से सजा, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आस का पंछी, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1961 में। साथियों, हमराही में हमारे दिल के या कहें जीवन भर के हमराही का विशेष महत्व होता है हमारी जिंदगी में। यदि वो आंखों से दूर हो तो दिल के और भी पास हो जाता है, जिसकी अनुपस्थिति हमें यकीनन बेचैन कर देती है।

ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी। गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर समन्वय इस गीत में। मिस्टर एंड मिसेस 55 जो रिलीज हुई थी 1955 में, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। मित्रों, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं। इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सभी, और जब हमराही अच्छे हों तो सफर जीवन का हो या कुछ घंटे मिनट या लम्हों का, कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता।

0: कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना। गुलशन बावरा की लिखी रचना थी मित्रों, मुकेश हेमलता की आवाजों का सुंदर जादू। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम विश्वास।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों से सजाइएगी था आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया। राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना थी। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों, जिसका नाम है वारिस। साथियों अब एक खूबसूरत अदा लिए ये एक और गीत सुनते हैं, जिसमें एक मीठी प्यार भरी शिकायत का खूबसूरत अंदाज शुमार है।

दो दिल, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। मोहम्मद रफी और आरती मुखर्जी की आवाजों का जादू था। 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। हेमंत कुमार का संगीत था, कैफी आजमी की लिखी रचना। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। रात्रि के 3:43 हो चुके हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अब आगे इस गीत की तरफ।

0: मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वर से सजा ये गीत अभी आपने सुना साथियों। सुदर्शन का संगीत था और प्रेम वर्धवर्धनी का लिखा ये रचना थी। माल रोड ये था फिल्म का नाम जिसका ये गीत था। वर्ष 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों और अब जागने की गुजारिश कर रहे ये किनको कर रहे क्यों कर रहे गीत सुन करके पता चलेगा।
1: जागो अनजानी राज दुलारी ढल गया चंदा कटी रात सारी। जागो अन

0: जागो अनजानी राज दुलारी
1: ढल गया चंदा कटी रात सारी
0: जागो अनजानी राज दुलारी।

आरती मुखर्जी और सुबीर सीन की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। बेजन पाल ने ये संगीत दिया था इस गीत में और रामजी सिंह ने गीत लिखा था। फिल्म का नाम एक सूरत दो दिल। जी हाँ साथियों, एक सूरत दो दिल फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। 1968 रिलीज ये फिल्म थी मित्रों।

साथियों, कोई भी मौसम हो उससे प्रभावित होती ही हैं हम, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो। और इन दिनों तो गर्मी बरसात दोनों ही मौसम बिल्कुल चल रहे हैं, और खुशगवार और भी ज़्यादा मौसम हो जाता है जब सावन बरसता है। सावन के साथ साथ जब आगे मौसम बढ़ता है तो हर मौसम का कुछ इंतज़ार इस तरह रहता है कि सर्दी होगी तो ये करेंगे, गर्मी होगी तो ये करेंगे, बरसात होगी तो ये काम करेंगे। कुछ काम हमारे जो है मौसम पर भी निर्भर करते हैं, जी हाँ। लेकिन सावन का मज़ा अपना एक अलग ही होता है, और हाल ही में बहुत सारा सावन हमने गीतों के जरिए भी तो मनाया है, रोज़ बरोज़ मनाते हैं। फिलहाल सावन वाला गीत आपको बिल्कुल नहीं सुनवा रहे हैं, कोई और गीत सुनवा रहे हैं, मौसम, मौसम की बात करता हुआ।

तलत महमूद और लता मंगेशकर के स्वरों से सजी ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी। चित्रगुप्त का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था। फिल्म का नाम बर्मा रोड, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1962 में।

चलेंगे गुनगुना के वफा के गीत गा के, संदेश पूर्ण प्यार भरा ये गीत अभी हमने सुना। मुकेश कृष्णा कल्ले की आवाजों से सजा ये गीत गहरा राज फिल्म से, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1971 में। राज रविंदर का संगीत था, अख्तर रोमानी की लिखी रचना थी। इसी रचना के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार, समाचारों के बाद मिलते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले

0: मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणाम वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ दो दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में आज आयोजित होने वाले मोटर कारकेड रिहर्सल के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। इनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और 12 खंभा रोड सहित अन्य सटे मार्ग शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब और ECI नेट पर सम्मेलन होगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। देश के ज्यादातर भागों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek yesterday, the Prime Minister said, "There can be no place for double standards on terrorism." Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said in a media briefing that the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the organization's 25th anniversary. The summit concluded with 13 key outcomes covering counter-terrorism, climate action, energy, disaster management and digital cooperation. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The two-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit brings together the centre and states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The summit focuses on 4 key areas, including

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 4:11 और 12 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। धरती पर सूर्य की सुंदर लाली

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना, जिम्बो फाइंड्स अ सन, ये था फिल्म का नाम जो रिलीज हुई थी वर्ष 1966 में। सपन जगमोहन का संगीत था, नक्श लायलपुरी की लिखी बहुत ही सुंदर ये रचना थी। साथियों, रात की जो हम सफर होती हैं, सुबह होते होते कुछ थकान भी जाहिर हो जाती है और अपने घर की ओर चल पड़ते हैं हम सभी। जी हाँ, जैसे दिन में काम करते हैं उसी तरह से रात में भी ड्यूटी होती है हमारे कई साथियों के, जैसे हम भी इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे साथ भी कई साथी आकाशवाणी में भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसी तरह का एक गीत जो कहता है कि रात के हम सफर थक के घर को चले, आइए आपको सुनवाते हैं।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज़ों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस, जो रिलीज

सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे हैं, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना, आवाज गीता दत्त की, फिल्म का नाम बाजी, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1951 में। साथियों, वाकई खुशी तो आ ही जाती है जब हम कहते हैं कौन आया वो आए, वो मतलब मन के मीत आए। मन के मीत किसी भी तरह से हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक ही रिश्ता हो, जीवन साथी का रिश्ता हो, हमराही का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रिय आता है तो चेहरे पे चमक तो आ ही जाती है, मन में खुशी तो आ ही जाती है, जैसे इनके आ रही है।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं वक्त फिल्म से। 1965 रिलीज ये फिल्म, रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। वाकई साथियों, जब कोई प्रिय नजर आ जाता है या ऐसा लगता है कि वो आने वाला है तो चेहरे पे चमक तो आ ही जाती है, और इसीलिए तो कहा जाता है कि और जब वो आ जाते हैं तो हो सकता है वो कुछ कह दें, क्या कह दें, या दोनों मिलकर के कुछ कह दें। तो आइए सुनते हैं इसी गीत में, इसी गीत के साथ साथ इसके बाद ये गीत।

छोटे बाबू इस फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। 1957 रिलीज ये फिल्म। तलत महमूद, लता मंगेशकर की आवाजें थी, मदन मोहन का संगीत, इंदिवर की लिखी रचना थी।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। और अब बढ़ते हैं एक और गीत की ओर। जी हाँ, उदासी छोड़ो, गम छोड़ो, सुस्ती छोड़ो, मस्ती में आ जाओ, अपने कर्म की ओर बढ़ो।

किशोर कुमार भूपेंद्र सिंह की आवाजों से सजी ये रचना प्रेम पुजारी फिल्म से अभी आपने सुनी। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सचिन देव बर्मन का संगीत था, नीरज की लिखी।

रचना थी। साथियों, हमारी जो पृथ्वी है हरी भरी वसुंधरा है, बहुत ही सुंदर है हर लिहाज से। जहां पहाड़ हैं, नदियां, झरने, सब कुछ तो समाए हैं, सारी नज़ारे इसमें समाए हैं, चाहे वो हरियाली हो या कुछ भी। इस वसुंधरा को बचाने वास्ते हमें छोटे छोटे जो प्रयास हैं वही बस करने हैं, जरूर करते रहें उस तरह के प्रयास।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत अभी आप सुन रहे हैं बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म से जो रिलीज हुई थी 1967 में। सतीश बत्रा का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना थी। साथियों और अब ये गीत

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना हरे कांच की चूड़ियां फिल्म से 1967 रिलीज फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की लिखी रचना। और अब आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सच रही है ये।

मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज उसी सजी ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी शबाब फिल्म से 1954 रिलीज ये फिल्म। नौशाद का संगीत था शकील बदायूनी की लिखी रचना और ये थी आज की अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसी गीत के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार, भोर सुहानी कार्यक्रम के साथ मिलेंगे समाचारों के बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के संबंध में दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों पर चिंता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र को प्रमुखता से शामिल किया गया।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करने और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: जल अवसंरचना परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन,

0: जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान, पेयजल प्रणालियों के स्रोतों की स्थिरता तथा जल जीवन मिशन का दूसरा चरण। कृषि और कल्याण किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के अंतर्गत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर बल दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर रहेंगे। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वे मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में आज आयोजित होने वाले मोटर कारकेड रिहर्सल के सिलसिले में यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। इनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और 12 खंभा रोड सहित आसपास के अन्य मार्ग शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा के दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और दिल्ली में भी आज तेज बारिश की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of the Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek yesterday, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said in a media briefing that the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the organization's 25th anniversary. The summit concluded with 13 key outcomes covering counter-terrorism, climate action, energy, disaster management and digital cooperation. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The 2-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit brings together the centre and states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The summit focuses on 4 key areas, including the timely implementation of water infrastructure projects, Jal Sanchay Jan Bhagidari, Catch the Rain, Drinking Water Source Sustainability and Jal Jeevan Mission 2.0. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a roundtable in New Delhi on ease of doing business aimed at scaling India's data center ecosystem. In a social media post yesterday, he stated that the roundtable featured excellent discussions with key stakeholders including data centers, hyperscalers, cloud providers, power producers and equipment suppliers on streamlining regulations and strengthening digital infrastructure. The government said that the country has adequate availability of onion and it has begun a calibrated and targeted release of buffer stocks through Kanda Express and road transport to ensure

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 5:11 और 12 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

लता मंगेशकर की आवाज से सजी ये रचना आपने सुनी वंदना फिल्म से। 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। रवि का संगीत था, आसद भोपाली की लिखी रचना थी। साथियों, जीवन में संघर्ष कम नहीं होते। कभी किसी तरह का संघर्ष, कभी किसी तरह का तन मन और धन, तीनों तथ्यों से जुड़ा हुआ। लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, मेहनत से बिल्कुल नहीं डरना है। बस मेहनत की करते रहिए, कर्म करते रहिए।

जी हाँ साथियों, मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। जिंदगी में परेशानियां उलझने आती ही रहती हैं, कभी सुख और कभी दुख, लेकिन रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, मेहनत से कभी नहीं डरना है और अपने को कमजोर कभी नहीं मानना है। जी हाँ, मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। फिलहाल ये गीत आपने सुना बलबीर और मन्ना जी साथियों के स्वरों में, बंटवारा फिल्म से। 1961 रिलीज ये फिल्म रही थी। एस मदन का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी बहुत ही सुंदर ये रचना थी। और अब आइए गाते हैं, गुनगुनाते हैं इस गीत के संग संग में।

सुमन कल्याणपुर की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। फिल्म का नाम जानवर, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1965 में। साथियों, और इस गीत के बाद अब हम बढ़ रहे हैं एक और बहुत ही सुंदर गीत रचना की तरफ। जैसा कि कार्यक्रम है भोर सुहानी, उसी मुताबिक गीतों पर हम चल रहे हैं और समय अनुकूल जो गीत हम सुनते हैं उसमें सुनने में और भी आनंद आता है। आइए सुनते हैं ये शास्त्रीय राग आधारित रचना।

लता मंगेशकर मन्ना की आवाज से सजी ये सुंदर रचना आपने सुनी। वसंत देसाई का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम झनक झनक पायल बाजे, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1955 में। और अब इनकी सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं।